0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज।
1: लाख पर्दों में रहूं, भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबान डोलती है, शायरी सच बोलती है।

0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।
1: गजल पेशी खिदमत है हसरत मुहानी की।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: वो आपकी खिदमत में शायर लखनवी की गजल जो फरमाइश के तौर पर दी गई है, जो थके थके से तो हौसले

0: रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन और नाज़रीन, इस वक्त हम फ्रांस की फजाओं से एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप पाकिस्तान में टीवी पर देखते रहते हैं, अखबारात में पढ़ते रहते हैं और जानी पहचानी शख्सियत है, मेरी मुराद है सेनेटर सलीम ज़िया साहब। इस वक्त फ्रांस की फजाओं में हमारे साथ कोपेनहेगन डेनमार्क की फजाओं में मौजूद हैं। सेनेटर साहब, हम आपको कोपेनहेगन की फजाओं में खुश आमदीद कहते हैं।
2: बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जनाब, आपको और तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। सेनेटर साहब, यहाँ चूंकि हमारे पास पार्लियामेंटेरियन आते रहे तो यहाँ का एक रवाज आप कह लें, यहाँ की मतलब मीडिया अपने मौजूद मेहमान से कहता है आप अपना तारफ करा दें ताकि कोई बात रह ना जाए, आप क्या करते रहे, इस वक्त क्या कर रहे हैं और क्या क्या आप अपने जो तालीमी हवाले से, अपने पेशे के हवाले से, फिर हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे।
2: मेरा नाम सलीम ज़िया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, सेनेट का मेंबर हूँ। सियासत मैंने नहीं बल्कि तालीम के हवाले से पूछे तो तालीम मैंने अमेरिका से खुद अपना MBA किया, फिर पाकिस्तान आ गया, फिर यहाँ पर आके कुछ अर्सा मुलाजमत भी की, प्रैक्टिस की, वकालत शुरू की और फिर 1990 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की। उससे पेशतर मैं 83 में काउंसलर इलेक्ट हुआ, फिर 87 में काउंसलर हुआ, फिर 90 में काउंसलर इलेक्ट हुआ और फिर हमारा क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड है कराची में बलदियाती अदारा है, उसका 12 साल में वाइस चेयरमैन इलेक्ट हुआ। फिर 97 में जो हमारे जनरल इलेक्शन हुए उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से MP इलेक्ट हुआ कराची से, MQM के सिटिंग हमारे मेंबर थे, उनको उनसे मैंने ये सीट हासिल की और उसी में जो कैबिनेट बनी 1997 में, जिसमें लियाकत जतोई साहब थे चीफ मिनिस्टर, उसमें मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से वज़ीर कानून और मिनिस्टर फॉर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स बनाया गया। और क्या होता है,
1: माशाल्लाह
2: आपने वो मामला चलता रहा, फिर 12 अक्टूबर आ गया। 12 अक्टूबर में जाहिर है वो बड़ा एक जरा सख्त वक्त था, उसमें ये था कि हमारे 21 मेंबर्स थे जी, सारे 21 मेंबर्स में से ज्यादा तो नहीं छोड़ के गया पार्टी 12 अक्टूबर को, 21 में से 20 छोड़ गए, तो सिर्फ मैं रह गया उसमें। इसी तरह हमारे कौमी असेंबली के मेंबर थे उस वक्त 12 में से भी 10 छोड़ गए, सिर्फ एक रह गए। तो ये सिलसिला जारी रहा और फिर वो बाद में फिर इंशाल्लाह जो वक्त आया तो फिर हम पार्टी के साथ ही रहे। काफी सख्त वक्त था मगर हम ये देखते थे कि हमारी क्यादत जिस तरह की सख्ती बर्दाश्त कर रही है तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मुझे ये भी एहसास हासिल था कि जो उनके लिए डिफेंस टीम बनी थी बड़े वकला के साथ, मियां नवाज शरीफ साहब को जो एक झूठे जाली और बेबुनियाद हाईजैकिंग केस में उन पर बनाया गया था, उस पर मैं उस टीम में, उस डिफेंस टीम में मैं भी शामिल था और उनके साथ फिर हमारी अदालत में और जेल में मुलाकातें भी होती रही, तकरीबन हर रोज ही होती थी और मैंने उनको जेल में बहुत मजबूत पाया, हमारी तमाम टीम को, अपने शहबाज शरीफ साहब को और मियां साहब को तो खैर थी, वो सबके सरपरस्ती थे, सबको बहुत अच्छी तरह मैंने देखा जांचा और मैंने देखा कि बड़े मजबूत असाब के मालिक हैं और बस यही है इंटरव्यू अपना।
1: माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई आपकी बातें सुन के और मैं कहता हूँ यहाँ चूंकि हम लोग डेनमार्क में रहते हैं, कोपेनहेगन में, तो यहाँ जो बंदे डिजर्व करते हैं, मैंने आपकी थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में इतना ज्यादा नहीं जानता था, जो मेरे सामने वेबसाइट पे पढ़ा उतना ही थोड़ा सा मैंने देखा, माशाल्लाह आप डिजर्व करते हैं अपनी सीट पर, आपने एक वक्त दिया अपनी सारी जिंदगी का हिस्सा तालीम के साथ, अपने पेशे के साथ, सियासत के साथ, आप ग्रास रूट से भी ऊपर आए और ये आपका राइट बनता था, आपको अगर पार्टी ने ये दी है सीट तो आपकी जात पर कोई एहसान नहीं किया, आप डिजर्व करते थे। अब बातें हैं चूंकि आपने आपका सारा स्ट्रगल का दौर है,
2: सर मैं थोड़ी सी इसमें पेशी कर दूं ये आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप क्योंकि भाई हैं, आप मेरी असलामी कर रहे हैं, सच बात यह है वो मुझ जैसे आदमी के लिए बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ہماری نہ وہ خدمات ہیں نہ وہ حیثیت ہے, مگر پارٹی نے جو ہمیں جو کچھ دیا وہ میں تو کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں میری صلاحیت قابلیت سے کہیں کہیں زیادہ پارٹی نے مجھے عزت اور احترام دیا ہے.
1: یہ آپ کی ذرا نوازی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. پارٹیاں اپنے ورکرز کو اپنے ساتھیوں کو ڈیفینیٹ سیٹ دیتی ہیں. میں کہتا اگر آپ ڈیزرو نہ کرتے تو میں کبھی بھی نہ کہتا کہ آپ سینٹر سیٹ کے قابل ہیں. جس جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو انہی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو ڈیزرو کرتے ہیں, اور پارٹی کا رائٹ بنتا ہے, یہاں بھی پارٹی بھی اپنے لوگوں کو جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں, جس طرح آپ نے فرمایا کہ 21 ممبر تھے 20 چھوڑ گئے اور آپ اکیلے. تو میں اس اینگل سے میں نے کہا تھا کہ آپ کی ذات پر کوئی احسان نہیں ہے جو ہے نا. پارٹی تو ٹھیک ہے, ساتھی آپ پارٹیاں نوازتی ہیں, لیکن اب میری یہ بات آپ سے گزارش ہے کہ ابھی جو موجودہ پاناما لیکس کا ایک نیا اسکینڈل بنا, ایک نیا میں کہوں گا پنجابی میں ایک نیا کٹا کھول دیا عمران خان صاحب نے, آپ کیا کہیں گے؟
2: کچھ نہیں, یہ تو اصل میں عمران خان, پہلے تو پاناما لیکس کو تو خیر ہم کر لیں گے, وہ پہلا مسئلہ تو خان صاحب کا اپنا ہے کہ وہ, میں حیران ہوں کہ اتنی بڑی سیاست وہ کرنے کے خواہش مند ہے. وہ وزیر اعظم بننے کا شوق بھی رکھتے ہیں اور وقتاً فوقتاً اس پر بیانات بھی دیتے رہتے ہیں, مگر ان کی میں نے یہ دیکھا کہ کسی ایک بات پہ کہیں ٹکتے نہیں ہیں. یعنی ابتدا جو ہے وہ کہیں سے شروع کر ہوتی ہے بات, پھر کہیں جا کر کہیں رک جاتے ہیں. ابھی اسی کو دیکھ لیں, بعد میں دوسری باتیں اور بعد میں کرتے رہیں گے. کہ انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ جی یہ, اور خود ان کے ریکارڈڈ سٹیٹمنٹس ہیں کہ جی وہ اس میں جو پہلے میاں صاحب نے کہا کہ جی ہم ریٹائرڈ چیف جسٹس کو بنائیں گے اور وہ تحقیقات کریں, تو انہوں نے کہا نہیں سٹنگ چیف جسٹس ہونا چاہیے. اب چیف جسٹس کو بنا دیا گیا ہے اس کے لیے, تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ بھی قبول نہیں ہے, اس پہ جی ٹی او آر ہونے چاہیے, فلانے ہونے چاہیے, ٹمکانے ہونے چاہیے, صرف نواز شریف کا ہونا چاہیے. کیوں صرف نواز شریف کا کیوں ہونا, تو سب کا ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو نواز شریف صاحب کا نام ہی نہیں ہے اس پورے فسانے میں, اس کا ذکر نہیں ہے پورے فسانے میں. ذاتی طور پر ان کا کہیں ذکر کوئی نہیں ہے. انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے, پورے خاندان کو پیش کر دیا ہے, چیف جسٹس کے حوالے سارا معاملہ کر دیا ہے, اس پر بھی عمران خان صاحب راضی نہیں ہیں. کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی ادھر چھپتے ہیں, کبھی ادھر چھپتے ہیں, اور اصل میں ان کو مشکل پڑ گئی ہے ہاتھ پکڑ کر چلنے کی اور پیچھے چھپنے کی. کبھی انگلی اٹھانے والوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں, اور ابھی بھی وہ اسی چکر میں ہے کہ کوئی داؤ پیچ لگ جائے, جائز ناجائز, جس میں جناب ان کا کوئی ان کو پار لگا دے, مگر کوئی بھی ان پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان کی کوئی سیاسی پارٹی ان پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور جن کو یہ بہت زیادہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ شاید ان کی مدد کریں گے, وہ ان کو بار بار ان کو بتا چکے ہیں کہ ان کا ان کاموں سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اور ہم میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے, پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے. اب یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں, بائی الیکشن جتنے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر, صوبائی ہوں قومی ہوں, سوائے ایک آدھ کے سب انہوں نے لوز کیے ہیں. کراچی میں انہوں نے جو 2013 کا الیکشن تھا, وہاں انہوں نے بھائی جان 800,000 کی غریب ووٹ دیے, وہ 800,000 ووٹ لے لیے, اور ایک سال کے اندر اندر, زیادہ ڈیڑھ سال کے اندر اندر وہاں پر بلدیاتی الیکشن ہوئے, کنٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے جی. وہ کنٹونمنٹ کے الیکشنز کے, میری آپ بات کو چھوڑ دیں, آپ ابھی اعداد و شمار منگا لیں, آپ کے پاس ساری فنگر ٹپس پہ ہوتی ہیں آپ لوگوں کے, آپ دیکھیں کہ وہاں پر جن حلقوں میں کنٹونمنٹ میں الیکشن جہاں ہوئے, جہاں پر 2013 میں ان کو کتنے ووٹ ملے تھے, اور یہ بلدیاتی جو کنٹونمنٹ کے بلدیاتی الیکشنز ہوئے اس میں کتنے ووٹ ملے. میں سمجھتا ہوں کہ میں تو ایک ہفتہ 250 کو میں جانتا ہوں, جہاں سے میں نے انتخاب لڑا تھا, اور پی ایس 113 سے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 80% ووٹ جو ہے کم پڑا ان کو ایک سال کے ڈیڑھ سال کے اندر, کیونکہ اس کی ایک تو پارٹی میں گروپ بازی بہت زیادہ ہے, پھر ان کا کنٹرول نہیں ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں یہ جو کراچی میں دو معاملات ہوئے بڑے دیپ, وہاں پر ایک سیٹ خالی بھی تھی, جس کا آپ دیکھ بڑا نوٹ کر رہے ہوں گے, پڑھ بھی رہے ہوں گے, کہ کینڈیڈیٹ نے الیکشن کی رات کو ایم این اے کا جو کینڈیڈیٹ تھا ان کا, انہوں نے الیکشن کی رات کو اس نے पार्टी छोड़ दी, टिकट वापस कर दिया, मुंह पे मारा इनके, और जनाब उन्होंने कमाल साहब को ज्वाइन किया। इसी तरह इनके पास एक बड़े मंजे हुए पुराने कारकुन थे, सैयद हफीजुद्दीन साहब, एडवोकेट
1: जी जी,
2: एमपीए थे, सिटिंग एमपीए, अभी भी असेंबली के मेंबर है। वो सब चीजें छोड़ छाड़ कर इनको उन्होंने कहा कि मैं इनके साथ मजीद में चल ही नहीं सकता, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। तो इनके साथ मसला ये है कि इनके पार्टी पे ग्रिप नहीं है। अभी कराची, ये भी जो परसों जलसा हुआ है इस्लामाबाद कल, उसमें भी आप देखें हाजिरी की क्या हालत थी, जज्बे की क्या हालत थी, जोश की क्या हालत थी पहले के मुकाबले में। वो मतलब वो चीज थी नहीं जो आज से एक डेढ़ साल पहले थी। उसमें कमी आती जा रही है, कमी आती जा रही है, क्योंकि एक जगह टिकते नहीं है, एक जगह पे रुकते नहीं है, और दूसरा एक मशवरा तो लेते ही नहीं है बिल्कुल, और सिर्फ ये इस चक्कर में है कि कोई दाव पेच लग जाए, कुछ हो जाए, बस मुझे किसी तरह कल नहीं तो आज नहीं तो अभी इसी वक्त मुझे किसी तरह वजीर आजम बना दिया जाए। होता नहीं ऐसे ना, ये तो बड़ा ठंडा काम है, बड़ी ठंडा करके खाना पड़ता है इसमें। वो क्यों इतनी जल्दी में है वो शायद वो खुद ही बता सकते हैं, मगर मुझे एक बात समझ में आती है, ये इनको सबसे बड़ा जो खतरा है इमरान खान साहब को
1: जी,
2: वो ये कि अगर डिस्प्यूट से नवाज शरीफ साहब की पूरी पार्टी और उनकी गवर्नमेंट जो है जिस तरह वो मामलात को लेकर चल रही है, और यही अगर 2018 तक चलता रहा इसी तरह इसी स्पीड से मामला, तो उनको पता है कि 2018 में ये बिल्कुल वाइप आउट हो जाएंगे। अभी भी वाइप आउट ही हैं तकरीबन। पंजाब में देखें इनकी कई सीटें नहीं है, दूसरे सूबों में कई सीटें नहीं है सवाल खैबर पख्तूनख्वा के अलावा। तो इनको खतरा ये है कि यार 2018 तक अगर ये इनको हमने जाने दिया और इसी स्पीड से ये कार्रवाई करते रहे अपने, और इनकी मकबूलियत इसी तरह बढ़ती रही और बाय इलेक्शन इसी तरह ये जीतते रहे, तो 2018 में तो हमारा कोई टिकट भी नहीं लेगा। ये इनको खतरा ये है और कुछ नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये अगर थोड़ा सा हौसला कर लें, थोड़ी सी हिम्मत कर लें, तो इनके शायद मामला ठीक भी हो सकते हैं। मगर जो आदमी इतनी जल्दी में होता है ना जी, वो मैंने तो उसको आज तक आगे जाते हुए नहीं देखा। तो ये बहुत बड़ी एक एक्सेप्शन होगी अगर इनको कोई चीज हासिल
1: हो। सलीम साहब, आज बात चूंकि मैं मीडिया में हूं, मैं एक बात आपसे शेयर भी कर रहा हूं। इमरान खान साहब इतने उस वक्त पॉपुलर नहीं थे, मैं चंद साल पहले की बात कर रहा हूँ। इंग्लैंड में मेरी इनसे एक जगह मुलाकात हुई, मैं भी गेस्ट था, मुझे इंग्लैंड से किसी ने बुलाया था, तो वीआईपीज हम बैठे हुए थे, तो मुझे कहने लगे राय साहब आप क्यों नहीं सियासत में हिस्सा लेते, तो आप एक ऑफिस खोले। तो हम बस आपको, मैंने कहा मैं ठीक है जो काम करता हूँ मैं इसमें खुश हूँ, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। तो मुझे उस वक्त महसूस हुआ कि इमरान खान साहब ये बात क्यों कर रहे हैं कि आप लोग ऑफिस खोले। तो मुझे जब ये धरने की बात हुई, इस्लामाबाद की बात हुई, तब उसका जवाब मुझे मिला। तो इसका मतलब है कि प्लानिंग बहुत पहले की हो चुकी थी।
2: जी जी जी, ये प्लानिंग तो बहुत करते रहते हैं, ये प्लानिंग तो करते हैं। कभी मुशर्रफ के साथ बहुत अरसा चले, उन्होंने जब वजीर आजम नहीं बनाया ठुकरा दिया, उसको छोड़कर आ गए। फिर नवाज शरीफ साहब की भी बहुत नजदीक आने की कोशिश की, और फिर बहुत ही बहुत ज्यादा डिमांड कर दी सीटों की, जाहिर है वो भी इनको मना कर दिया गया। तो ये मुख्तलिफ हरबे मुख्तलिफ वक्तों पे कोशिश करते रहते हैं, और बस जाहिर है मगर इन चीजों में कामयाबी कहाँ होती है।
1: चले देखें ना, जब मियां साहब की बात करते हैं कि मियां साहब के ऐसे है पैसे है, करप्शन की बात करते हैं, तो जब अभी इनकी जहाज पे तस्वीर नजर आ रही थी, एक तरफ अलीम खान बैठे हुए थे, दूसरी तरफ जंगी तरीन खान साहब बैठे हुए थे, तो जो लोग हम लोग
2: दो एटीएम जो है, जी जी जी जी, अच्छा मैं समझ गया, उनको आजकल एटीएम ग्रुप कहलाता है।
1: बिल्कुल एटीएम ग्रुप है। तो वैसे इमरान खान साहब जितने सर मतलब पैसे वाले लोग होते हैं और जिन्होंने पैसा किसी और तरीके से बनाया होता है, उनको अपनी पार्टी में लेते हैं, ये तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई है यूरोप में। सलीम साहब, हम आते हैं कि ये जो सारे हालात चल रहे हैं और मियाँ साहब जो अब खुल के बिल्कुल फ्रंट लाइन पर आ गए हैं खेलने के लिए, और अब ये जलसा जुलूस जो शुरू हो गया, और मियाँ साहब ने आज कोटली सतियां गए थे, उसके बाद एबटाबाद जा रहे हैं, फिर कराची जाएंगे, तो कहीं ये इलेक्शन की तैयारियां तो नहीं है?
2: नहीं सर, नहीं कतन नहीं। इलेक्शन तो मैं देखे राजा साहब आपसे मैं रस कर दूं, आप तो भाई हैं, और मैं आपको बिल्कुल ये पार्टी से हटकर मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्शन 2018 में ही होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। ये क्योंकि एक एक्टिविटी उन्होंने शुरू की है, तो और ये खाम एक इन्होंने एग्जाम तराशी का सिलसिला शुरू किया हुआ है یہ صرف اسی حد تک محدود ہے ہماری پارٹی کی طرف سے. ہمیں کوئی جلدی نہیں الیکشنز پہلے کرانی کی. ہماری پوزیشن ہر جگہ ماشاءاللہ مضبوط ہے, خواہ وہ پنجاب میں ہو, بلوچستان میں ہو. ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں آزاد کشمیر میں, انشاءاللہ دیکھیں گے گلگت بلتستان کی طرح وہاں بھی ہمیں زبردست کامیابی ہوگی اور وہاں پر بھی ہمارا ہی کینڈیڈیٹ جو ہے ہماری پارٹی وہاں پر حکومت بنائے گی انشاءاللہ.
1: سلیم صاحب, اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر مسلم لیگ نواز بجلی اور یہ گیس کا بحران جو ہے یہ اپنے آنے اگلے الیکشن 2018 سے پہلے پبلک کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو پبلک بادر نہیں کرتی. دیکھیں پیٹرول سستا ہو گیا, گیس بھی سستی ہو رہی ہے, تیل بھی سستا ہو رہا ہے, تو پبلک کو تو جو سہولتیں چاہیے. پبلک اتنی دور کی نہیں سوچتی کہ پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے, صوبائی اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے, وہ اوپر والے لوگ دیکھتے ہیں.
2: عام آدمی تو دیکھتا ہے کہ یار میری جیب سے پیسہ نکل کتنا نہ رہا ہے, خرچہ کتنا میرا کم ہو گیا پہلے سے یا زیادہ ہو گیا. وہی آپ کی بات درست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2018 سے پہلے انشاءاللہ خدا چاہے گا کہ یہ جو بجلی کا مسئلہ ہے اور پانی کا مسئلہ ہے, یہ بنیادی طور پر جو دو مسائل ہیں انرجی کے اور اس کے, یہ بالکل کور ہوں گے. اور پھر یہ جو بہت بڑا بیچ میں معاملہ آ گیا ہے ہمارا, یہ چائنا کے ساتھ جو ہوا ہے, سی پیک جو ہوا ہے,
1: کوئی شک نہیں
2: یہ 47 بلین ڈالرز کا پروجیکٹ ہے. اس میں سڑکیں ہیں, روڈیں ہیں, پورٹس ہیں, گوادر پورٹ ہے اور بہت سارے اس میں انٹر لنکڈ پروگرامز ہیں. اور تب تک انشاءاللہ وہ بھی پای تکمیل تک پہنچنے والا ہوگا, یعنی اس کے نزدیک ہوگا. اس کے ذریعے بلوچستان میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی, گوادر پورٹ کافی اسٹیبلش ہو چکا ہوگا, سڑکیں بن چکی ہوں گی, ہائی ویز بن چکے ہوں گے, موٹر ویز بن چکے ہوں گے. اور اس کے لیے تو آئے دن یہاں پر اس کی تشریح بھی ہو رہی ہوتی ہے, بتایا بھی جا رہا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں, یہ ان کو خطرہ ہے. یہ دوسری جو پارٹیز ہیں خصوصی طور پہ یہ ان کو, عمران خان کو خطرہ ہے, یہ بات کی اور کوئی بات نہیں ہے. باقی یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں جو ہماری قیادت اس معاملے کے لیے کہ انہوں نے ذرا تیزی شروع کی ہے, تو اس کا جواب دے دیا جائے کہ جناب یہ سارا چیز جھوٹ کا پلندہ ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں, یا تو ہوتا نا کہ نواز شریف صاحب کہہ دیتے جی کوئی کمیشن نہیں ہے, کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں ہے, کوئی سپریم کورٹ نہیں ہے, کوئی ریٹائرڈ چیف جسٹس نہیں ہے, کوئی سرونٹ چیف جسٹس نہیں ہے, میں نہیں مانتا کسی کو, بس میں جو ہے جس نے جانا عدالت وہ خود چلا جائے. وہ اپروچ تو کی نہیں. میاں صاحب نے تو ایک بہت ہی دلیری کا, بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ چلو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کرے گا ساری چیز, کاروائی کرے گا. اور میں اپنے پورے خاندان کو پیش کرتا ہوں. اب اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی, چاہتے کیا ہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا. عمران خان صاحب, یا تو کوئی ایسا ترکیب کر دیا جائے کہ عمران صاحب آپ میری کوئی مدد فرمائیں, میری میں اس بات کی میں بھی سفارش کرنے کے تیار ہوں کہ عمران خان صاحب کو بنا دیتے ہیں چیئرمین.
1: بالکل, میں آپ سے یہ بات کہنے لگا تھا کہ آپ چیئرمین سے بھی زیادہ دیں, چونکہ میاں صاحب دینے والے ہیں. تو انہیں کہیں یار آؤ, میں عمران خان صاحب سے میں نے بات کی انگلینڈ میں, میں نے کہا خان صاحب آپ اس طرح کریں, آپ اگر میاں صاحب کے ساتھ ملتے, آپ میاں صاحب کے ساتھ ہوتے, تو میں ڈیفینیٹ آج کم از کم پاکستان کی بہت بڑی پوسٹ پر آپ ہی ہوتے.
2: جی جی جی جی.
1: لیکن آپ
2: بس وہ اپنا ٹھیک ہے, ہر آدمی کا اپنا نظریہ ہوتا ہے. ہم ان کو اور تو میں کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتا ان کے لیے, مگر جو کچھ میں نے دیکھا ہے یہ 4-6 سال میں ان کو آبزرو کیا ہے کہ وہ ایک بہت ہی کنفیوزڈ شخصیت میں نے ان کو پایا, بہت ہی وہ.
1: حالانکہ ایکسفورڈ کے پڑے ہوئے ہیں, یورپ میں رہے ہیں, انہیں تو دیکھیں جس طرح وہ پاکستان میں جلسے جلوس میں تقریر کرتے, خطاب فرماتے ہیں, تو پتہ نہیں چلتا کہ ایکسفورڈ سے گئے ہوئے ہیں.
2: ہاں نہیں نہیں, وہ ظاہر ان کے لب و لہجے میں اور بہت زیادہ بیچ میں غلاظت بھی ہوتی ہے, بےودگی بھی ہوتی ہے. پر آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے لیڈر نے کبھی اس کو جواب نہیں دیا,
1: کبھی بھی نہیں, کبھی, بہت اس میں کوئی شک نہیں.
2: بلکہ یہی کہا کہ, بلکہ یہ برملا کہا ہے, یہ الفاظ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے عمران خان گالیاں بھی دیتا ہے اور میں اس کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں. اب یہ دیکھا نا, کوئی یہ تو آدمی کے ظرف کی بات ہے کہ وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے اور میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے لیے ابھی بھی ہمیشہ دعا کرتا ہوں.
1: جہاں ڈیبیٹ چل رہی تھی, انہوں نے کہا جی دیکھیں میاں صاحب نے ان کو اسپتال کے لیے جگہ دی, یونیورسٹی کے لیے جگہ دی, کرکٹ ساتھ کھیلتے تھے, بہت سارے اچھے تعلقات تھے, میاں صاحب نے کون سی زیادتی کی ہے خان صاحب. چلیں چھوڑے ان باتوں کو, آتے ہیں چونکہ آپ آئے ہوئے ہیں, مہمان ہیں آپ. سلیم صاحب, آپ کو فرانس کیسے لگا؟ اور میں نے دیکھا کہ آپ نے پاکستان امبیسی کا بھی وزٹ کیا.
2: بتاؤں گا آپ کو, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں.
1: جی ضرور.
2: یہ ये हमारी जो सियासी पार्टीज हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, हम समझते हैं कि हम तो सारा दिन भी अगर सिजदे में पड़े रहें ना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें सारा दिन, तो वो भी कम है, क्योंकि हमें जो ये पाकिस्तान मिला है ना अल्लाह ताला की तरफ से
1: नेमत है ये।
2: ये मैं कहता हूँ इतनी बड़ी नेमत है कि जिसका कोई हिसाब कोई नहीं है। ये लोग अभी कई लोग तासुर ये देते हैं, हालांकि पढ़े लिखे भी हैं, बाशूर भी हैं, वो तासुर ये देते हैं कि शायद पाकिस्तान ऐसी बस चलते चलते चलते चलते रात हुई और फिर सुबह उठे तो पाकिस्तान बन गया। नहीं, ये तो ये याद दिलाना पड़ेगा हमें अपने बच्चों को, अपनी औलादों को, अपने नए लोगों को कि भाई ये इस तरह नहीं बना है। या पुराने लोग भी हम देखते हैं, वो भी तो लगता है कि भूल गए कि पाकिस्तान बना कैसे। पाकिस्तान तो बड़ी लंबी जद्दोजहद के बाद बना है। इसमें तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और उनके जो रफ्तकार थे, अलामा इकबाल साहब थे, सर सैयद अहमद खान थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर और ये सरदार अब्दुल रब रिश्तर, ये दुनिया जहान के जो लोग थे, मौलवी फरीद हक, ये लोग तो वो लोग थे। और फिर इन लोगों की कुर्बानियां, लाखों सैकड़ों जो वर्कर्स थे उनकी कुर्बानियां, और आखिर में जो तकरीबन 18 लाख के करीब जो लोग शहीद हुए थे पार्टीशन के वक्त, ये उनकी कुर्बानियों से पाकिस्तान बना है। ये कुर्बानियां दी गई हैं, लोगों ने अपनी जान का नजराना देकर पाकिस्तान बना है, खून देकर बना है। ये हमें किसी इंजीनियर ने, किसी डॉक्टर ने, किसी खिलाड़ी ने या किसी जनरल ने फतह करके नहीं दिया पाकिस्तान। हमने ये पाकिस्तान वहां मुसलमान ने हिंद, जिन्होंने लाखों लोगों की वाकई कुर्बानी दी, अमली तौर पर कुर्बानी दी, उसकी वजह से हमें ये पाकिस्तान मिला है। और आज हमें कोई ये सबक सिखाए कि जनाब ये हो गया है और वो हो गया है। मैं समझता हूँ राजा साहब एक बात बिल्कुल तय है, पत्थर पर लकीर है कि पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, पाकिस्तान ने बहुत आगे जाना है
1: इंशाल्लाह,
2: और वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए जाएगा कि अगर यहाँ पर जमहूरियत रहे,
1: इसमें
2: जमहूरियत रहेगी पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह।
1: इंशाल्लाह
2: कोई यहाँ पर निजाम नहीं चल सकता,
1: हाल ही दूसरा हल नहीं है।
2: जब भी जमहूरियत डिरेल हुई है पाकिस्तान में जबरदस्त नुकसान हुआ है, जबरदस्त किस्म का नुकसान हुआ है, ख्वाह वो बांग्लादेश के हवाले से हो, ख्वाह ये जिस तरह हमें आग में झोंक दिया गया, अफगानिस्तान वॉर में झोंक दिया गया, या फिर जो सबसे ज्यादा जुल्म और जबर जो किया जनरल मुशर्रफ ने किया, जिसने ये तमाम सारी चीजें जिसका आज हम कुमायदा भुगत रहे हैं, जिसमें तकरीबन हमारे 60,000 लोग शहीद हो चुके हैं, जिसमें 15,000 हमारे बहादुर फौज के लोग हैं, ये सारे ये इसी वजह से शहीद हुए कि ये इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से। मगर आज देखें अभी आप ये बीच में बात रह गई, ये बातें करते हैं कि जनाब ये अभी दो बड़े मसले थे जब इकतदार में आई पार्टी, शुमारी वजीरस्तान वहां को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। देखें बात इंसाफ की होनी चाहिए, वजीर आजम उस वक्त भी था कोई, उस वक्त जनाब सारे मामला थे, सारी चीजें थी, फौज भी थी, रेंजर्स भी थी, सिविल इंतजामिया भी थी, वहां पर कुछ काम नहीं किया गया। इसी तरह कराची में वहां पर तो पिछले 27 साल से दो पार्टियां हुकूमत कर रही हैं, पीपल्स पार्टी और MQM, वजीर आला भी था, गवर्नर भी था, मिनिस्टर्स भी थे, मुशीर भी थे, असेंबली के मेम्बरान भी थे, कौमी असेंबली के मेम्बरान भी थे, सेनेटर भी थे, रेंजर्स भी थी, फौज भी थी, नहीं किया कुछ किसी ने, क्योंकि एक पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं था। अब इस दौर में जब ये जैसी हुकूमत आई तो मियां साहब ने दोनों के मामले में, वो वजीरस्तान के हवाले से हो और कराची ऑपरेशन के हवाले से हो, उन्होंने तय कर लिया कि हमने इन दोनों मामलों को सही करना है। कराची जो है पाकिस्तान की शहर आ गए, ये तमाशा बना दिया गया है, वहां पर 20,000 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, टारगेट किलिंग में मारे जा चुके हैं, कत्ल किए जा चुके हैं, अगवा बराए तावान हर रोज का मामला था। इसी तरह शुमाली वजीरस्तान में अमाजगा थी, नर्सरी थी, हेडक्वार्टर था दहशत गर्दों का, वो हमारे बहादुर फौज ने, हमारे सिपाहियों ने, हमारे अफसरों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। आज आप देखते हैं कि वहां पर मामला बहुत ठीक है। इसी तरह कराची में भी उन्होंने सिंगल हैंडेडली नहीं किया, ये नहीं किया कि मैं करूंगा, नवाज शरीफ ने कहा कि मैं सबको साथ लेकर चलूंगा, सूबाई हुकूमत भी होगी, रेंजर्स भी होगी, आर्मी भी होगी, सिविल सोसाइटी भी होगी और दीगर पार्टीज भी होंगी, सबको साथ लेकर चलेंगे और हमने यहाँ पर नतीजा देना ही देना है, अक्रॉस द बोर्ड होगी, और वही आज उसका नतीजा देते हैं। वरना राजा साहब ईद के दिन हाजिरी कम होती थी नमाजों में, जुमे की नमाजों में कम होती थी, 6 सितंबर को कोई बाहर नहीं निकलता था, 14 अगस्त को लोग बाहर नहीं निकलते थे, ईद के दिन जो मेले होते थे वो उन्हें बंद हो गए थे कई सालों से। इस मरतबा पहली मरतबा ये हुआ है कि जनाब वहां पर खुलम खुला वहां पर सारी चीजें हुई हैं, लोग धड़ाधड़ बाहर निकले हैं। ये वोट इलेक्शन की बातें करते हैं आज, ये धरने ये बातें करते हैं, जलसे जुलूस करने की, ये खुद कहते थे कि हमारे पास लोग नहीं, हम लोग लोगों को जनाजा कंधा दे सके, इतने इतना दहशत और इतना खौफ था।
1: इसमें कोई शक नहीं, इससे हुकूमत को क्रेडिट जाता है, हुकूमत की मर्जी ना हो तो फौज तो हुकूमत के साथ चलती है, फौज तो जो हुकूमत कहेगी फौज ने तो वो करना ओबे करना है। स्लिम साहब हम तो एक दो आखिरी सवाल करते हैं, मुझे पता है मसरूफ है। स्लिम साहब आपने विजिट किया, आपने गालिब साहब से आपकी मुलाकात हुई, गालिब साहब माशाल्लाह बड़े पॉपुलर हैं, जो मेरे पास नॉलेज है को वो पसंदीदा शख्सियत है, बहुत कम ब्यूरोक्रेट्स हमने देखे हैं, बहुत कम एम्बेसडर देखे हैं जिनसे हम लोग मोहब्बत करते हैं। तो आपकी मुलाकात हुई, आपने लोगों को अपने साथियों से या पार्टी के लोगों से या आम लोगों से आपकी मुलाकात हुई तो उनका क्या नजरिया एम्बेसी के बारे में, एम्बेसडर साहब के बारे में?
2: मैंने अपोजिशन की सियासत खासकर जनरल मुशर्रफ वक्त में इतनी ज्यादा की, मैं आज उनको भी कह रहा था कि किसी अफसर की तारीफ करना जो है वो उससे जबान लड़खड़ाती है, या किसी की भी तारीफ करते हुए क्योंकि ट्यूनिंग ज्यादा अपोजिशन की हो गई है। मगर मैं आपको सच बात बताऊं, मैं यहाँ 4 दिन से आया हुआ हूँ। मैं आया तो था, हमारी कॉन्फ्रेंस थी वहां इस्लामाबाद में अपना वॉशिंगटन में, और फिर मेरे यहाँ पर कुछ चेकअप्स वगैरह थे तो मैं फ्रांस भी आ गया। तो मैंने यहाँ पर देखा कि आमतौर पर जिस जगह भी मुल्क में जाएं तो वहां लोग सफारत खाने की कार्रवाई पर जरूर अपना तबसरा देते हैं। मैं गया मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, तो यहाँ पर जब मैं आया, जब से मैं आया था, मैंने देखा कि किसी ना किसी बहाने कोई ना कोई लोग, जो आसानियां पैदा हो गई हैं पिछले 3-4 सालों में, 3 सालों में खासतौर पर, उसका वो जिक्र जरूर करते थे एम्बेसडर साहब। मैं जानता नहीं, मुलाकात ही नहीं थी मेरी, मैं नहीं जानता उनको, तो उसका जिक्र जरूर करते थे कि जी बड़ा उन्होंने काम किया है। मसलन मैंने कहा भाई क्या क्या काम कर दिया, क्या तारीफें की है, क्या जो इतनी तारीफ कर रहे हो क्या वजह क्या है उसकी? उन्होंने कहा जी पहले तो ये था कि यहाँ पर कोई हमें पूछता नहीं था, पासपोर्ट रिन्यू कराने जाते थे, और क्या काम होता है, लंबे चौड़े को काम होते नहीं है। कहने जी छोटे छोटे काम के लिए जाते थे तो कई कई दिन लग जाते थे, लाइनों में लगना पड़ता था, सुबह जाते थे रात को आते थे, सुबह जाते थे रात को वापस आते थे, और स्टाफ का जो रवैया था वो बड़ा खराब था। तो कहेंगे ये जब से ये आए हैं गालिब साहब, गालिब इकबाल साहब, तो इन्होंने सारी चीजों को बिल्कुल दुरुस्त करके रख दिया। मैंने कहा मसलन, उन्होंने कहा जी पहले दफ्तर पहले नीचे बेसमेंट में होता था, और वहां पर ना बैठने की सही जगह, ना उठने की, ना स्टाफ के लिए, और खासकर जो लोग जाते थे उनके लिए कोई हाल ही नहीं था, कोई पूछता नहीं था उनको। तो ये कहेंगे कि ये उन्होंने तब्दीली की, फिर उन्होंने ऐसा सिस्टम कर दिया कि उन्होंने सब, मेरे ख्याल यकीनी तौर पर उन्होंने स्टाफ को तंबीह की होगी, ट्रेनिंग दी होगी उनको।

0: साइकोलॉजी अभी आप हमने काम को सीखना है, सही करना है, तो लड़के तो सुननी पड़ेगी। तो उसके बाद फिर इनको सही पोजीशन पता चली कि यहाँ तो बिल्कुल ही बड़ा रख हुआ मामले था। तो उन्होंने ये सारी चीजें की, दुरुस्त की। आज लोग कहते हैं कि भाई वो हमारे ये राजा अली असगर साहब है,
1: जी जी
0: दोस्त है, भाई है हमारे, और यहाँ पर बहुत सोशल वर्क भी कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा आना जाना रखते हैं लोगों के साथ, जो खासकर नए लोग आते हैं उनकी बड़ी मदद करते हैं, क्योंकि खुद माशाल्लाह काफी इनका काम एस्टेब्लिश है, 30-40 साल से है, बल्कि पाकिस्तान में भी इनका सियासी असर रसूख खासा है, क्योंकि इनके अपने एरिया में अभी ये 2 UCs जीते हैं, बल्कि कई लोग तो इनको ये भी क्या मशवरा दे रहे हैं कि अगले इलेक्शन में भी हिस्सा लें वहां MPA के लिए। तो ये यहाँ पर बहुत इनका असर रसूख है। कल भी इन्होंने बहुत यहाँ 250-250 लोगों का एक सिलसिला रखा हुआ था, और उसमें दावत भी थी, खाना भी था, मधु भी किया हुआ था लोगों को, साफी भी थे, और दूसरे मुस्लिम लीग के और सीधा सीधा पाकिस्तान के जो लोग हैं वो लोग भी आए हुए थे। तो इन सब की राय यही है, मशवरा यही है इनका कि बल्कि ये तो बहुत ज्यादा ये चाहते हैं कि इनका ट्रांसफर रुक जाए किसी तरह, ये जाए ना, क्योंकि 3 साल पूरे हो गए,
1: टेन्योर पूरा हो गया।
0: मैं भी आज मिला हूँ, मुझे उनकी शख्सियत बहुत प्यारी लगी, बहुत बाखलाक, बहुत देर तक हमारे साथ बैठे भी रहे, बातें भी सुनी, और मैंने भी उनको ये मशवरा दिया, क्योंकि जाहिर है मेरे से उम्र में छोटे भी हैं, और वैसे भी हमारी क्योंकि जिम्मेवारियां हैं हुकूमत में, तो मैंने उनकी बहुत हौसला अफजाई भी की है, उनके साथ। वो हमारे जो एक अफसर थे उनके साथ, वो भी जो ये पासपोर्ट सेक्शन के इंचार्ज हैं, उनको भी मैंने यही मशवरा दिया कि जो आपने जो रवैया रखा हुआ है इसको आप जारी और सारी रखें, और ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सवाब का काम है जो आप लोग कर रहे हैं। एम्बेसडर साहब गालिब इकबाल साहब जो है वो अपना रवैया इसी तरह रखेंगे, और इनका जो स्टाफ है वो भी अपना ये रवैया कायम और दायम रखेगा, ताकि जो हमारे लोग हैं बड़ी दूर दराज से आए हुए होते हैं, बड़ी सख्त तकलीफों में।
1: मेरा भी खुद मीडिया सारे से जो फ्रांस का मीडिया रहता है, दोस्त हैं सारे, लेकिन वो इसी तरह जो बातें आप कह रहे हैं वही बातें सारी वो भी यही बातें करते हैं, लफ्ज दूसरे लफ्जों में यही बातें करते हैं। मैं आपको जरा डेनमार्क लिए आता हूँ। आपको याद होगा कि डेनमार्क में 2 दफा एम्बेसी के बाद डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी, और उसके बाद चौधरी निसार साहब ने कहा था भाई इनका मसला क्या है, इनको रीडेबल पासपोर्ट मशीन हमें मिल गई, चले अल्हम्दुलिल्लाह पासपोर्ट बनने शुरू हो गए, रीडेबल पासपोर्ट मशीन। अब स्लिम जाह साहब, मोहतरम नवाज शरीफ साहब भी यहाँ तशरीफ लाए थे, लेकिन कुछ अरसे के बाद उनकी हुकूमत चली गई थी। राजा जफर अलहक साहब से भी ये बात रही, अब आपके कोलीग भी हैं, मेरा जरूर उनको सलाम दीजिएगा, बहुत ज्यादा हमारे अपने हैं, और ये सिलसिला चलता रहा। सब लोगों से हमने बात की, हमारा मसला है ड्यूल नेशनैलिटी का, दोहरी शहरियत का,
0: ठीक है।
1: हमसे पहले स्वीडन को मिल चुकी है, हालांकि हम पुराने डिमांड करने वाले हैं, उसके बाद अमेरिका को मिल गई, पड़ोस में हमारे 20 मिनट का रास्ता नहीं, हम स्वीडन के अंदर दाखिल हो जाते हैं पुल क्रॉस करके, और पता ही नहीं चला कि उनके सफीर मोहतरम ने कैसे उनको दोहरी शहरियत दे दी। हमने बहुत कोशिश की, साल से कोशिश कर रहे हैं, पहली एक मोहतरमा थी 8 साल उनके साथ कोशिश, आपने कहा अपोजिशन की, हमने तो यहाँ सारा वक्त ही अपोजिशन का गुजारा है। तो मौजूदा जो सफीर साहब आए, अच्छा वक्त चला, इन्होंने वादा किया कि जी इंशाल्लाह आपको दोहरी शहरियत जो मिल जाएगी, हमने पिछले मार्च में देख रहे, शायद पिछले मार्च में मिल जाए, और अब जो नया मार्च ये भी अपना गुजर गया, कुछ नहीं मिला। यहाँ मैं आपको बताऊँ, हुकूमत ने सितंबर में दोहरी शहरियत का कानून पास कर दिया है, उन्होंने शर्त भी नहीं रखी कि अगर आपको कोई, हम कोई डिमांड रखेंगे जिन्हें पहले कोई पेपर लेके, उन्होंने कहा जी आपको आपकी हुकूमत आपकी एम्बेसी आपको पासपोर्ट देती है शरिया, हमें कतन कोई एतराज नहीं है, उन्होंने इसका बिल पास कर दिया। अब सफीर मोहतरम ने एक ऐसी चाल चली कि इसको पैकेज की शक्ल में जाके जर्मनी और चेक रिपब्लिक के साथ एक पैकेज की शक्ल में इसको डाल दिया जानबूझ के। बेसिकली मैं आपको आज इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये अपने कायम अली शाह साहब के जो हैं वो सफारशी हैं, मैं ऑन एयर आपको कह रहा हूँ, मैं छुपा के बात नहीं, मेरे मिलते हैं, बैठते हैं, चाय इकट्ठे पीते हैं, इस तरह का कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन बात पब्लिक की है। क्या बात है कि जब भी मुस्लिम लीग की हुकूमत आती है डेनमार्क के लोगों को, यहाँ मुस्लिम लीग मजबूत है, डेनमार्क के लोगों को कुछ नहीं मिलता। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं पब्लिक की तरफ से कर रहा हूँ चूंकि मैं खुद मीडिया में हूँ, कि खुदारा मियां साहब डेनमार्क के लोगों को दोहरी शहरियत मिल गई है, ये एक एजाज की बात होती है हुकूमतों में, इसको आप क्लियर करें ताकि लोग अपने जाकर अपनी एम्बेसी से पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाए, रेवेन्यू देंगे, पैसे देंगे, पासपोर्ट बनवाएंगे, पैसे मिलेंगे। आपके अगर शहरी वापस आपके पास आना चाहते हैं तो उसके रास्ते में एम्बेसी सबसे बड़ी रिकावट बनी हुई है, और जो हमारे सफीर मोहतरम

0: ये बिल्कुल कभी इस तरह बात करते, कभी ये हो गया जी, बिल्कुल लिख दिया, हमारी बड़ी मजबूरियां जी, हमारे पास कुछ नहीं है। तो सलीम साहब, अगर इस जमहूरी दौर में कुछ नहीं मिलेगा तो फिर कब मिलेगा?
1: उसके बारे में पता नहीं था पहले क्या क्या कुछ होता रहा है
0: जी जी,
1: और दूसरे ममालिक में क्या क्या आसानियां हो रही हैं, दीगर जो आस पास है, ये सारी तफसील अगर हमारे पास आ जाएगी
0: जी जी,
1: तो इसको मैं डेफिनेटली पूरी तनदही से इस मामले की आपकी मदद करूंगा
0: इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बल्कि चौधरी निसार साहब के भी नॉलेज में ये बात है।
1: अच्छा अच्छा ठीक है,
0: लेकिन कोई बिल्कुल सोई हुई है जी, जैसे पता चले।
1: आपसे गुजारिश ये होगी कि आप मेरे से रब्ता भी रखें।
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह रखेंगे।
1: आज तो बहुत अच्छा हो गया कि आपसे रब्ता हो गया, बहुत खुशी भी। अगर आप मेरा नंबर भी अगर आप नोट फरमाना चाहें तो मैं आपको दे रहा हूँ, बल्कि ऑन एयर दे रहा हूँ, किसी और में भी बात करनी हो
0: ठीक है,
1: कोई बात मुझ तक पहुँचानी हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 0333-0233-2297-2297।
0: बहुत शुक्रिया सलीम साहब। आखिर में यहाँ डेनमार्क के बसने वाले शहरियों को आप क्या पैगाम देंगे और अपनी पार्टी के लोगों को क्या पैगाम देंगे?
1: कि ये जो हमारे जितने भी लोग हैं ओवरसीज, खुसूसी तौर पर अभी क्योंकि हम डेनमार्क में बात कर रहे हैं, डेनमार्क के लोगों से मैं मुखातिब हूँ, तो उनको से मैं सलाम पेश करता हूँ कि बड़ी मेहनत से, बहुत लगन से अपना काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान डेनमार्क की हुकूमत भी इनकी जो जो इनकी कोशिशें हैं, काविशें हैं, जिस मेहनत के साथ ये काम कर रहे हैं, वो भी इसको मानती हैं, और मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है कि यहाँ पर आकर अपने बच्चों की तालीम पर भी तवज्जो दे रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो अपने जो पाकिस्तान में सहूलत नहीं मिल सकी है या नहीं है या कम है, उसमें मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो नया ट्रेंड आया, बहुत अच्छा ट्रेंड आया है कि वो बच्चों की तालीम पर यहाँ पर अब ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो ये इसी तरह ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहें जिस तरह कर रहे हैं, मेहनत भी उसी तरह करते रहें जैसे कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का मजीद नाम भी रोशन करेंगे, और जाहिर है जो यहाँ से जो जर मुबादला जा रहा है उसमें भी पाकिस्तान की बहुत मदद हो रही है, और ये इसको जारी और सारी रहना चाहिए, और ये जाना सब चीजें कानूनी तरीके से जानी चाहिए, किसी और गैर कानूनी तरीके से भेजने का जो सिलसिला है वो मखल खासियत तक कम भी हो गया है, बस उसको बिल्कुल पूरी तरह खत्म हो जाना चाहिए, ताकि जो फायदा पाकिस्तान की हुकूमत को पहुंच सकता है वो जरूर उसको पहुंचना चाहिए।
0: सलीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे सामान के साथ शेयर किया, इंशाल्लाह पाकिस्तान से भी आपके साथ रहा रहेगा।
1: बहुत मेहरबानी जनाब, सबको, सुनने वालों को, देखने वालों को, आपको सबको मेरा बहुत बहुत सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। समय ये थे मोहतरम सलीम जिया साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी, और चूंकि वो खुद अपोजिशन में सारा वक्त उनका गुजरा, स्ट्रगल में वो रहे, और तालीमी लिहाज से आपने देखा जब शुरू में उन्होंने अपना तारफ कराया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं कि मियार पे पूरे उतरते थे और डिज़र्व करते थे, जो उनकी सीट थी उनका राइट था, उनका राइट उनको मिलना चाहिए था, पार्टी ने उन पर कोई एहसान नहीं किया, पार्टी के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी। तो यहाँ भी आप लोग देखें जो पार्टियों में होते हैं, यहाँ की जो नेशनल पार्टीज़ हैं, जितनी पार्टियाँ हैं, तो जो लोग पार्टियों में होते हैं अपने पार्टी के साथ लायल होते हैं, मेहनत करते हैं, आगे जाते हैं, ग्रास रूट से ऊपर जाते हैं, तो डेफिनेट पार्टियाँ उन्हीं को अपने लेते हैं, सेनेटर भी लेते हैं। यहाँ को सेनेट का तो निज़ाम नहीं, यहाँ तो एक मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट होता है। तो मैं समझता हूँ कि सलीम जिया साहब ने आज सेनेट में बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को सेनेट में होना चाहिए, कानून साजी ये लोग करते हैं तो पढ़े लिखे ही लोग ही कानून साजी करेंगे, तो इन जैसे लोगों को वहाँ ज़रूर मौजूद होना चाहिए। अमर राजा अली असकर साहब के भी बड़े मशहूर हैं, उनके ये मेहमान थे और उनका भी बहुत शुक्रिया, थोड़ी देर के बाद उनसे भी बात करेंगे, चूँकि मेहमानों के साथ वो मसरूफ़ है। तो समय इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, ये लाइव प्रोग्राम था जो खसूसी तौर पर आपके लिए पेश किया गया, हमारे साथ रहिएगा।
2: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

उस वक्त की। ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है।
1: एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें। ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो बच्चियों ने दफ बजाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। यूं तलअल बद्रु अलैना दफ के साथ पहली नात ठहरी। इसी मोहब्बत और अकीदत को मद्देनजर रखते हुए दफ के साथ नजराना अकीदत बहुजूर सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश खिदमत है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बसमान, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल डेनमार्क में मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, हर एक का अपना स्टाइल है। मजर समाइन एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, तो मजर समाइन इस वक्त वो अपने ख्यालात का इजहार मौजूदा इशू पर करना चाहते हैं। आइए मजर समाइन सुनते हैं कि याकूब जान में तरजई क्या कहते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम मजर समाइन, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने याद किया और रेडियो आपकी आवाज़ पे मेरे खैरियत और मेरी गैरहाजिरी का सबब पूछते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने भी आप लोगों को भूला नहीं। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इस वक्त जो दुनिया में और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो फिज़ा बनाई है इन्होंने, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए मुसलमान एक पीसफुल मज़हब है, रवादारी का मज़हब है, और मुसलमानों ने हमेशा बहुत सारी बातों को दरगुजर किए हैं, लेकिन गैर मुस्लिम मज़हब हमेशा की तरह मुसलमानों को मजबूर कर रहा है कि तुम लोग जोश में आकर कोई ऐसा काम करो जिससे हम दुनिया में साबित कर सके कि मुसलमान तशद्दुद पसंद मज़हब है। हालांकि मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है, मुसलमान बिल्कुल अमन पसंद है। अब इन सारी बातों को गौर से देखा जाए तो इब्तिदा इन्होंने की है, यूलैंड पोस्ट वालों ने कार्टून छाप करके मुसलमानों की दिल आज़ारी की है। उससे भी यहाँ के मुसलमानों ने बहुत तामुल से काम लिया, सिर्फ और सिर्फ पीसफुल तरीके से एहतजाज करते आए। अब इन्होंने देखा कि मुसलमान तो बहुत ही अमन पसंदी से काम ले रहे हैं, कोई तशद्दुद कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। फिर एक और गलती जो यहाँ के वजीर आज़म साहब ने की, एक और ज्यादती की कि 11 मुल्कों के एम्बेसडरों ने इनसे मिलने को कहा, लेकिन वजीर आज़म साहब ने इनसे मिलना गवारा नहीं किया। मुआज़रत तो बहुत दूर की बात है, मिलना भी नहीं चाहा। तो इस तरह की गलतियां इससे पहले भी वज़ीर आज़म ने मुसलमानों को के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए, एक दफ़ा आप लोगों को याद है हॉलैंड के उस एक्ट्रेस को डेनमार्क बुलाकर बाकायदा टीवी पर एक घंटे तक उससे इंटरव्यू लेते रहे और इस्लाम के खिलाफ उससे जहर उगलते रहे। ये वो एक्ट्रेस थी जिसने हॉलैंड में फिल्म बनाई थी और जिस्म पर कुरानी आयतें लिखी थी, और उस फिल्म के डायरेक्टर को हॉलैंड में किसी ने कत्ल भी कर दिया था। तो उन्होंने यहाँ के मुसलमानों को ठेस पहुँचाने के लिए यहाँ के टीवी पर एक घंटा मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलती रही। फिर इस वज़ीर आज़म ने VIP प्रोटोकॉल दिया था उस एक्ट्रेस को और एक मेडल दिया था। तो ये सब क्या है, ये सब एक साजिश है। हम मुसलमानों को बहुत एहतियात करनी चाहिए, इनके साजिशों से होशियार रहना चाहिए, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिसको ये लोग जवाब बना कर एक इशू बना कर घर घर तलाशी शुरू कर दें, या जिसको भी अंदर करना चाहे या जिसको भी मुल्क से बदर करना चाहे, इस जवाब के तहत ये लोग हमारा जीवन हराम कर देंगे। हालांकि हम लोगों ने या हम मुसलमानों ने इस मुल्क को तरक्की की तरफ बढ़ाया है। अभी पता चला है कि मुस्लिम ममालिक में ये लोग बिलियन एंड बिलियन करोड़ों का माल बेचते हैं। ये मार्केट इनको कहां से मिल गई, ये तो हमारे ही मुसलमानों ने अपने अपने मुल्कों में इनकी ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई और इनको घर बैठे बैठे इतनी बिजनेस मिल गई कि ये लोग पागल हो गए। और पिया कियास्को कहती है कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया जाए। चलो आपकी बात मान लेते हैं, इन सब मुसलमानों को अपने अपने मुल्कों में भेज देते हैं, और अगर इन मुसलमानों के मुल्कों ने इन चीज़ों का बायकॉट कर दिया था जो मिलियन एंड मिलियन के हिसाब से आप लोग उससे पैसे कमा रहे हैं, तो पिया कियास्को से पूछे क्या ये सब चीज़ें डेंस के फोल्क पार्टी वाले खरीदेंगे। पिया कियास्को को बता दे डेनमार्क ने जो तरक्की की है वो डेंस के फोल्क पार्टी से नहीं की है, بلکہ انہی انواندرہ لوگوں کے توسط سے یہ ترقی ہوئی ہے. پھر بھی یہ لوگ انواندرہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جتنا ہم لوگ انٹیگریٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر کے ہم کو پھر پیچھے دھکیل دیتے ہیں. ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے حق جمہوری طریقے سے حاصل کرنا چاہیے اور قانون کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. پاکستان پائندہ باد.
3: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।